0: ta yeno
1: kanung ros ma mhekin
2: ye mosya chya mamu chya mosya lu mamu lu mosya mile mamu
0: nyangi rimtim dingi jo thanalave lagiri nyangila lolono prayaski
3: hari thila thila bulaki
4: karyakram adivasi sansar
0: रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्जरी
1: नाको रसेमु नजाटनी पट्टा लाफा को केरसे की मुसनी है।